में या तो मीटिंग करनी हो दे हैव अ प्राइवेट रूम्स एज वेल 4035905503 फिर है मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बिनिंग शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक अगर आपने मॉर्गेज का अगर आपकी रिन्यूअल आ रही है इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफ कोर्स शी वर्क्स विद द टीडी बैंक एंड शी कैन गिव यू द बेस्ट प्राइस अवेलेबल इनका फोन नंबर है 4036819687 4036819687 अगर आपने कुछ जो प्रिंटिंग करवानी डिजाइन करवानी है फॉर योर वर्क फॉर योर होम एनीथिंग शफी जीवानी कास्केट प्रिंटिंग माय गुड फ्रेंड्स लिए मेरी सारी प्रिंटिंग जो है यही करते हैं 4032502202 4032502202 ने एक बार फिर से आप सबको एडवांस में जो है जश्न आजादी मुबारक हमारे प्यारे से मुल्क पाकिस्तान की तो लीजिए आज का जो पहला गाना हम सुनते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ख्याल रखना भाई आलमगीर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कल मुझे ये बजाना था लेकिन फिर लेकिन जो बात नहीं बनी तो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक टुगेदर ख्याल रखना भाई आलमगीर

अगर कोई भाई सुन रहे हैं जो है, अगर आपने एक जो अगर आपको पैगाम देना हो जश्न आजादी का हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, यू कैन कॉल मी एट 5878994786 और यू कैन टेक्स्ट 5878994786।

Beautiful track, Khayal Rakhna by Alamgir and unke jo apne female ki voice thi wo the Benjamin Sisters. Agar aapko agar aap Pakistan se hain, so I'm sure you remember. Aur aaj jo hai maine inka jo pehla gaana isliye bajaya ki aaj jo Alamgir sahab ka janmdin bhi hai. Yes, so happy birthday to our legend. Yes, ji haan, our legend one and only Alamgir sahab jo ki abhi jo hai US mein rehte hain. Lekin unko jo hamari puri team ki taraf se aap sabki taraf se unko jo hai janmdin ki bahut mubarak ho. Hopefully उनको अल्लाह लंबी उम्र तो उनको बहुत जो है सेहत दे इसलिए बिकॉज यू नो फॉर पिछले कई सालों से उनका जो है अपना हेल्थ का इशू चल रहा है तो होपफुली ही विल गेट बेटर एंड इंशाल्लाह वो अभी और भी गाने हमारे लिए गाएंगे और अभी जो है हमारे जो है हम जो कि अपने मेरे स्पॉन्सर है हनीफ माओजी जो कि ए टू जी वैक्यूम से अभी जो अपना जिसका मैंने अनाउंस किया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दे डू जो है डायसन वैक्यूम क्लीनर्स जो है यू नो अपना इट्स वेरी फेमस ब्रांड डायसन वैक्यूम क्लीनर्स इनकी ये जो सर्विस भी करते हैं सो तो अगर आपने कुछ भी करना हो तो दे डू रिपेयर दे डू सर्विस फॉर द डायसन वैक्यूम क्लीनर्स सो और उन्होंने ये अपना ये भी कहा है कि अपना हनीफ माओजी की तरफ से हमारे सारे लिसनर्स को पाकिस्तान और इंडिया इसलिए इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो अपने 15 अगस्त का है तो सारे हमारे साथ जो अपने सुनने वालों को उनको जो है अपना जश्न आजादी मुबारक और अगेन हनीफ माओजी जो कि अपने ए टू जी वैक्यूम से हैं इफ यू वांट टू गेट फॉर योर होम फॉर योर रेजिडेंशियल और जो है कमर्शियल दे डू जो ऑल काइंड ऑफ सर्विस स्पेशली डायसन वैक्यूम क्लीनर एज वेल इनका फोन नंबर है 403-207-4882 तो लीजिए अगला गाना One of my favorite, जो of course, you know, when I was growing up in Pakistan, शहनाज बेगम साहबा की आवाज में बहुत ही मशहूर गाना जीवे जीवे पाकिस्तान Let's enjoy.

What a beautiful track is अपना सोनी जीवे जीवे पाकिस्तान जो हमने बचपन में हजारों बार सुना है इनको गाया तो जो है शहनाज बेगम साहिबा ने जो कि you know, I'm just going to give you some, history as well. Okay, इसलिए मैं भी ये अपना जो है पहली बार पढ़ रहा हूँ. Excuse me, इनका जो जन्म हुआ था 2nd अपना जनवरी 1952 में, फिर she passed away March 23rd जो कि पाकिस्तान डे है 2019 में. एंड ऑफ कोर्स शी वाज फ्रॉम द बांग्लादेश, आपको याद है. लेकिन ऑफ कोर्स जो है अपना 1971 के वॉर से पहले जो है अपना सब एक ही था, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. लेकिन फिर जो बाद में जो अलग हो गया 71 में, फिर जो बांग्लादेश शी वाज फ्रॉम द बांग्लादेश. एंड ऑफ कोर्स इनके जो जो गाने हैं उसमें से जो है सबसे मशहूर जो सोनी धरती अल्लाह रखे, और फिर जीवे जीवे पाकिस्तान भी जो कि अब जो है सो अपना सोनी धरती आपको आल प्ले लिटिल बिट जो है लेटर ऑन. 1992 में इनको जो है बांग्लादेश जो है अपना नेशनल फिल्म अपना अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी उनको जो है अपना खिताब जो है दिया गया. उन्होंने जो 11 साल से उन्होंने जो है अपना गाना शुरू कर दिया था, स्पेशली फर्स्ट जो है बांग्लादेशी मूवीज में. देन ऑफ कोर्स देन शी मूव टू पाकिस्तानी फिल्म्स एज वेल. और इनका जो असल नाम था वो था शहनाज रहमतुल्ला, जी हाँ. लेकिन ऑफकोर्स शहनाज बेगम के नाम से ये मशहूर ऑन द पाकिस्तान साइड. उनको जो है बहुत से अवार्ड्स मिले. 1965 में प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ जो है परफॉर्मेंस मेडल मिला. फिर इनको जो है एकुशी पाठक जो कि बांग्लादेशी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है अपना जो अपना अपना जो खिताब मिला, जो कि अवार्ड मिला. बट ऑफ कोर्स अगेन शी पास अवे इन मार्च 23rd 2019 में. अगला गाना एक और लेजेंडरी है, नूर जहां. यस, उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान इंडिया के जो है अपना बड़े सगीर की वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट. तो लीजिए इसका इनका एक जो है अगला गाना सुनते हैं. थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा जज्बाती है, बट इनके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही

0: ही अपना एक बहुत ही बड़े सिंगर जो है अपना गुजर चुके हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनको लाहौर में विद द गजल्स एंड द फोक सॉन्ग. फिर ऑफ कोर्स शी जस्ट बिकेम लाइक रेस्ट इज हिस्ट्री. उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है अपना फनकार के साथ उन्होंने गाया है. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड शी वाज इन पाकिस्तान. उन्होंने अब जैसे मैंने कहा कि जो उन्होंने जो है मूवी में भी उन्होंने काम किया था वो अगेंस्ट प्राण जो कि 1942 की थी खानदान. और इनका मैं अभी जो है जब भी व्हेन शी वाज यंग इनका मैं पिक्चर देख रहा हूँ शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उन्होंने बहुत सी जो है अपने मूवीज में काम किया. बड़ी माँ, जीनत, गांव की गोरी, अनमोल घड़ी, मिर्जा साहिबा, जुगनू एंड सो ऑन. देर आर अगेन देर आर सो मेनी अपना जो है मोर इज वेल. इनका जो सितंबर 21 को जैसे मैंने कहा कि इनका जो है जन्मदिन हुआ था तो लाइक यू नो आई माइट डू द होल शो ऑनर. इनकी बहुत सी गजलें बहुत से गाने इनके जो है बहुत मशहूर है. इनकी बहुत सी स्टोरीज भी बहुत है. इंशाल्लाह मे बी आई डू वन ऑफ द शो जो है इनके ऊपर खाली यू नो लेट्स जो है अपना सेलिब्रेट टुगेदर जो है अपना बर्थडे ऑफ वेरी वेरी लेजेंडरी वेरी वेरी जो है फेमस पाकिस्तान सिंगर नूरजहान साहब जिसको मलका तरन्नुम नूरजहां भी कहते थे जो कि उनको खिताब दिया गया था. एक में पीछे पिक्चर भी देख रहा हूँ जिसमें नूरजहां जी एंड जी लता जी वो दोनों गले मिल रही हैं. तो ऑफकोर्स दे वर नोन टू ईच अदर अपने बैक इन द डेज. और इन्होंने जो है बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जो है गाया जो इंक्लूडिंग लता जी, फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब, रोशन आरा बेगम, लता मंगेशकर जैसे मैंने कहा एंड बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ भी उन्होंने गाना गाया है. तो ऑफकोर्स यू आर लिसनिंग टू कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM. आज जो है यस वी आर जो है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. तो सारे मिली रंग में जो हमारे मशहूर हैं जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही आज मैं प्ले कर रहा हूँ. अगर आपने मैसेज देना हो हमारे हाथों में सुनने वालों को यू कैन टेक्स्ट मी 5878994786 5878994786. तो मिलते हैं एक छोटे सी ब्रेक के बाद एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक विद सम मोर मिली नगमे फ्रॉम नाहिद अख्तर का भी है, मेडिसन साहब का भी है, आलमगीर का एक और है मेरे पास. लेट्स स्टिक टुगेदर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कॉफी जला ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM.
1: परेशान हो खुद फिकर छो क्यूँकी तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार. ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन. चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी इत्थे सारिया लई सुविधावां मौजूद हन. अपॉइंटमेंट नहीं बनी चक्करी नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है. नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक. ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496. ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696.
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट. सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
3: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवा

फ्रेम लेनी है आपने लेनी है यू कैन जस्ट वॉक इन ए टू जी वैक्यूम जिसका नंबर है 4032074882 आवर गुड फ्रेंड हनीफ माओजी अगर आपने रेजिडेंशियल या तो फिर कमर्शियल वैक्यूम लेना है या तो सर्विस करवाना आपने जो है करवाना स्पेशली जो है हमारी गुड फ्रेंड इन्होंने मुझे मैसेज अभी किया हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यार स्पेशली जो है डायसन के यस डायसन वैक्यूम क्लीनर्स अगर आप सर्विस करानी है या तो नया लेना है दे कैन हेल्प यार हनीफ माओजी फ्रॉम ए टू जी वैक्यूम हरम रेस्टोरेंट जो कि नया खुला है जस्ट लास्ट वीक वहां पर हर तरह का हलाल पाकिस्तानी फूड अवेलेबल है अवर गुड फ्रेंड सोहेब वहां पर होंगे इफ यू टेक माई नेम दे माइट गिव यू गुड डील 4036296367 पोस्टल पिज्जा सर्कल जो कि संजीव काट का है वहां पर हलाल ऑप्शंस भी अवेलेबल है 4035905503 फिर हमारी दूसरी है मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बिनिंग जो कि शी वर्क फॉर टीडी बैंक अगर आपकी मॉर्गेज जो है रिन्यूअल पर आ रही है यू कैन सो यू कैन चेक विद हर फॉर द बेस्ट रेट्स इनका फोन नंबर है 4036819687 कास्केट प्रिंटिंग अवर गुड फ्रेंड शफीन जीवानी अगर आपने कुछ भी प्रिंटिंग करवाना डिजाइन करवाना कमर्शियल या फॉर योर हाउस और फॉर एनीथिंग फॉर एनी रीजन शफीन जीवानी 4032502202 यस वी आर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान डे इन एडवांस लेकिन आज मेरा ये हफ्ते आखिरी शो है इसीलिए वी आर डूइंग इट टुगेदर सो लेट्स एंजॉय वन मोर सॉन्ग फ्रॉम अमजद हुसैन तेरा पाकिस्तान है लेट्स एंजॉय

as well, but wear green. Yes, wear green. Show some pride for our country. I know वहाँ के जो है political हालत कभी सही नहीं रहे. आपने 79 years हो गए, लेकिन बाहर हम यहाँ पर बैठे हैं. बस हम दुआ करते हैं कि जो हो अच्छा हो, हमारा मुल्क सही सलामत रहे, और उसके दुआ जरूर करना. इसलिए कि ये बहुत मुश्किल से हमें ये मुल्क मिला है, और जिनके पास मुल्क नहीं है वहाँ पर आप जो है सोच सकते हैं कि उनकी क्या हाल है. अभी हम देखते हैं कि जहाँ आजकल दुनिया में जंग हो रही है उनकी क्या हाल है. लेकिन आई थिंक वी आर स्टिल लकी, वी आर स्टिल ब्लेस्ड कि हमारे पास अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम. अगला गाना, आखिरी गाना आपकी नजर करता हूं. इंशाल्लाह विल टॉक टू यू नेक्स्ट वीक एंड विल सी यू ऑन फ्राइडे 14 अगस्त ईदर देयर एट बैंक्वेट हॉल और न्यू होराइज़न मॉल. विल सी यू देयर. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा. आई लव यू ऑल.